परम पिता अकाल पुरख महाराज दी बड़ी मेहर होई के डुबदे होए संसार दे उपर कृपा कीती। सतगुरु ने सब तो पहला अवतार धार के सतगुर ते संसार ते कृपा कीती। सतगुर ने सब तो वड्डी

भाई संसार अंदर अवतरे प्रकट हो गए। अवतार लेना संसार दे लोगों वास्ते शायद कोई वड्डी गल नहीं सी, क्योंकि समय समय अनुसार

शब्द गुरपीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग भौरन गुरता।

कहने पछतावा ही पछतावा होती है। और उस पछतावे बनना कुछ नहीं, सिर्फ रोना ही रोना है रू ने पछतावे। इस श्लोक इस शब्द महाराज जी ने यह आख्या है, जम मार्ग पंथ न सूझई। कहते शरीर चो जो रूह ने निकलना है, जमा दे वस दे विच इसने होना है, और जिस रस्ते दे उत्ते इसनु ले जाया जाना है, उस रस्ते दे उत्ते इसनु कुछ भी इसने ना अकल ने कम करना, ना दिमाग ने कम करना, ना इसकी विद्या ने कम करना, ना इसकी सियाणप ने कम करना है। इसनु कुछ भी सुझना नहीं है कि हुण मैं की करा, किथे फस गया, किसनु पुकारा। जम मार्ग पंथ न सुझे, उस पंथ ते फिर कुछ नहीं सुझना। नहीं तो इंसान कोशिश तो करता ही है ना कुछ उथे कुछ नहीं सुझना, टोटली हेल्पलेस होना है। इंडिविजुअल जो हुण है इतना ही इंडिविजुअल रहेगा, तमाम चीजां नू एक्सपीरियंस करने वाला फील करने वाला इंडिविजुअल जरूर रहेगा, लेकिन सिर्फ बॉडी ही नहीं होगी, सिर्फ इतना ही फर्क है। पेन, विछोड़ा, लॉस, अटैचमेंट सब कुछ महसूस होएगा, लेकिन शरीर नहीं होएगा। जब मार्ग पंथ न सुझे, कुछ भी सुझना नहीं है। अगे चलते हैं, ओ राह अजिहा है एथे वर्गियां रौनक नहीं है, ओजड़ बिल्कुल उजाड़ अंध, फिर थिक डार्कनेस है, गुबारों का गुबार ही गुबार है। जब मार्ग पंथ न सूझी ओजड़ अंध गुबारो बा, अगे चल दे ना जल। इंडिविजुअल नु पानी पीन नु दिल करेगा पर कहते पानी नहीं मिलना, ना जल। लेफ तुड़ाइया ना लेफ तुड़ाइया रजाइया खूबसूरत बिस्तरे, इसका आराम करने दिल करेगा लेकिन इसनु ओ नहीं मिलना। ना जल लेफ तुड़ाइया ना भोजन प्रकार होगा, ना प्रकार प्रकार के तरह तरह के भोजन मिलने, कुछ नहीं मिलना। पर क्योंकि इंडिविजुअल तो ओही है ना, जिस दिया आदतां हन अच्छे बिस्तरियां ते सौण दिया, अच्छा खान दिया, अच्छा पहनन दिया, वो तमाम चीजां दी अटैचमेंट, उन तमाम चीजां दी इच्छा वासना इस दे अंदर होएगी और तड़पेगा कितना क्योंकि इसनु ओ प्राप्त नहीं होएगा। ना जल लेफ तुलाइया ना भोजन प्रकारोवा, भोजन पाओ ना ठंडा पानी, कुछ नहीं मिलेगा। नाल पाओ आख्या है, पाओ के साडा हुण कोई ना कोई केयर करता है,

और ओथे जाके कहते तुहाडी रूह इतनिया फूका मारेगी, इतनिया चीका मारेगी, इतना चिल्लाएगी, लेकिन उस चीख पुकार नु किसे ने सुनना नहीं, और वो चीख पुकार सदियां सदियां तक उचलती रहेगी, उसनु कोई नहीं सुना, क्योंकि महाराज जी ने वाणी इंज ही आख्या है।

0: राम कली महला तीजन निकंकार सतगुरु प्रसाद आनंद कया मेरे माए सतगुरु में पाए
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from our

अनक जन्म बीती अन फरमाई, अनक जन्म बीती अन फरमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई। दिन रैन

0: जल चढ़ाओ, फिर निरंजन मचाओ,
1: श्री कृष्ण का गुण बिछाओ, नदी का गंगा पाओ, चक्कर चक्कर चल चल रोले भोसन का कुमार जाने का।

राम को पोपर जारो राम को मेरा कांटा लात्या जाए रे हम बन जारो राम को हम

0: श्लोक मल्ला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाओ गोवर्धन नारायण तो दिन का तेरे माली तन मिल सखाई मंत्र पूरा प्रति बस समुद्र का पाई छोड़ ले पखंडा
1: मांस खाने करे निवास।

एक बारी सारे बोलिए, धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी सै मन मेरे, ते सब अपने स्वाय मिलासा,

माता कहती है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया, स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई लट

इतनियां गलतियां कीतियां पिछले जन्मां विच कि मुड़ के ओही गलतियां इस जन्म विच कर रहे हैं। ऐ जरा रेडियो बंद कर दियो, विच चल रहा है, टेप नू चलाण तों पहला वेख लिया करो। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह आखदे पहला गलतियां कीतियां हुण मुड़ के गलतियां कर रहे हैं, ते दाता जे तू बख्शना है ते बख्श लै, नहीं तां साडे लई तां अगे जुतियां तैयार। पातशाह गुरु नानक देव जी आखदे

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में। पातशाह आखदे

पातशाह गुरु अर्जन देव जी फरमान कर दे हैं, सासत सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे, खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए, राज मिल

हमारी जेबा एक रूप हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे ईरान हर तुम बड़ अगम

वटी हूँ बड़ा अबार तेरा मंदमा, वटी हूँ बड़ा अबार तेरा मंदमा। निर्मल निर्मल सूजा, निर्मल निर्मल सूजा, सुचो सूजा सुचो सूजा, सुचो सूजा सुचो सूजा, अंत न अंता सदा बेअंता। कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, तेरो थानं

जपे हरमंदर साजिया हरमंदर साजिया संत भक्त गुण गावे राम हरमंदर साजिया निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते हमें अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को

गुरदर्शनो गुरचरणी मथा गुरचरणी मथा उस्तत मन में करनंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना।

आशिक नसन दिल दे बेड़े चानन होसी, दिल दे बेड़े चानन होसी, दूर तना दे चरना निश्चे करना, दिल दे बेड़े चानन होसी, दूर तना दे चरना निश्चे करना, जेकर संता नाल गंढीवें

अमृत छार बिखे बिख खाए, माया मो भरम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुरु संगत, तै मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाय। असमला चौथा, छंत घर चौथा, धन धन श्री गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास साहिब जीओ। हर

बाजार, बाजारी बाजार में आकड़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आल पतार, लटकिया के मुंदड़े लटकिया के हार, जितन पाई नानका सेतन हो मैं छार।

न जाइए, जियो पिंड सब तिसदा देखा जा गवाई है। जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो निसदाई है, जे जरवाना पर हरे जर

0: सको नवे आपको परको नवे को इधर तारा जू तोलिए नवे सगोरा हो अपराधी दूणा नवे जो अंता मृगा शीस नवाये क्या थिए जार दे कुसुधे जाए
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजुस बुगुल समादंग मुखचूट विभुखन सारंग त्रैपाल त्यार विचारंग गलमाला दिल लिलाटंग दो दोती बस्त्र कपाटंग जय जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निचो करमं कहो नानक निचो त्यावे बिन सतगुरु बाट ना पावे पौड़ी
2: पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जावना।